ओम श्री प्राण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की सत्य सनातन दार

0: भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म
1: की जय।
0: शुभ रात्रि।
1: स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

जयदीप नारायण भगवान का जय। गुरु नानक जी महाराज की जय। दीप नारायण भगवान की जय।

ओम श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। श्री अलकापुरुष महादेव की जय। श्री स्वामी माधवानंद चिस्ता गुरुदेव की जय। विश्वगुरु महामंदेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

श्री दीप निरंजन सब दुख बल, प्रभु दीप निरंजन सब दुख। इसी मंत्र से होवे मन मंजन, इसी मंत्र से मन मंजन। श्री दीप निरंजन सब दुख, प्रभु दीप निरंजन सब दुख।

0: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, हरि ओम, गुड मॉर्निंग।
1: हो रहा क्या अर्थ?
0: आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू फर्स्ट स्टैंड अप। वी विल बिगिन विद द नेशनल एंथम बिकॉज इट्स आवर इंडिपेंडेंस डे।
1: Először azt szeretném kérni, hogy álljatok fel, mert a nemzeti himnusszal kezdjük, ugyanis ez a függetlenség napja most.
0: In India, we do not stand like this, not like this, but like this and straight.
1: Indiában így állunk.
0: ऊपर यहीं ठीक है, लोग देखेंगे, यहीं आ जाओ। सावधान, जय जय जय। You can start.

शिव भक्त स्वदेशो भुवनत्रयम् शुभम करोति कल्याणम् आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि

हरबो नमः गौर शंकर भगवान देवपुरी सा महादेव. सो वेरी सुन इज कमिंग महाशिवरात्रि एंड दिस महाशिवरात्रि हैज डिफरेंट मीनिंग्स नॉट ओनली अबाउट दैट हंटर हु वाज वेटिंग होल नाइट दैट इज ए सत्संग आई विल स्पीक आफ्टर ऑन द शिवरात्रि नाइट. This is the energy which is uniting. This is the consciousness, Jiva. Shivaratri we will have here. And this is a Shivalinga from Himalaya.

0: श्रीदे प्रणयम भगवान की जय श्री श्री विश्वगुणम दशव परम स्वामी महेश्वर जी गुरुदेव की जय।
1: सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Salutations to the cosmic self.
2: Tiszteletem a kozmikus önvalónak.
1: Salutations to Srila Purujasatapit Parampara.
2: Tiszteletem az alappuriji paramparának.
1: Madan Vatranam Sa Beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamurleshwar Maheshwaranand Puriji.
2: Pranam, őszentség a Gurudev.

सिद्धिप्तनियम भगवान की जय। श्री श्री विश्वगुरुम दशवापरम स्वामी महेश्वरंज गुरुदेव की जय।